0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सर।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

ले ले मजा मत भरे राग से, क्या जाने कल क्या होगी इन बहारों की अदा, क्या जाने कल क्या होगी इन बहारों की अदा। ऐ दिल तू न डर इस जहान से, ऐ दिल तू न डर इस जहान से।

कदम कह रहे हैं तुझे, बढ़ते रहे जिंदगी के नशे, बह गए कदम कह रहे हैं तुझे, बढ़ते रहे जिंदगी के नशे। अरे कहने दे जमाना तुझको कह दे जो बुरा, अरे कहने दे जमाना तुझको कह दे जो बुरा, ऐ दिल को न डर इस जहान से।

मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ पे 5 मिनट बाकी है 8:30 बजने में और बुधवार के सुबह की कार्यक्रम यहाँ से आपके लिए पेश हो रहा है। और जैसे आपको पता है तो इस साल का 9वां महीना चल रहा है और खुशी की बात तो ये भी है जो हर साल आता है और हर महीना आता है, तो आज ये महीना का ये कुछ बेहतरीन दिन है कि 9वां दिन है और 9वां महीना चल रहा है। हाँ,

ये सुनर सुनर गीत आपके लिए, हाँ स्पेशल आपके लिए, एल कताख मैंने लिफ मैंसे एल कताख द्रख्त अन न्यू बखेन इन सैन अन एन एर सैन ओक न्यू कंस अन स्ट्राउचे लिख्त लात लोस वत गिस्टरन फान ये फ्रूग फनाग ब्रेंक लिफ्टे एन होप गनूग. Licht en liefde voor ons allemaal.

0: आओ बच्चों, मैं तुम्हें
1: आशा भोसले जी के आवास में लाचेदाख नित इन हत वातर फालन रेगन geen probleem. Dat is dan gewoon extra glans op je dag.
0: Ik ben heel erg

सुंदर सा गीत फरमाए गया आपके लिए कि प्यार का दर्द है। इस बारे ऐसी हसीन चांदनी गीत का बोल है आपके लिए।

वाकई में ऐसे हंसी चांदनी पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जो चल गया सो चल गया। और अभी 9 का वक्त विज्ञापन चलाएंगे, और विज्ञापन के बाद हर बुधवार की तरह आज भी श्री पंडित राजकुमार महात्म जी उपस्थित रहेगा अपने ही मुखारबिन से हमको सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। तब तक हम आपके लिए ये सुंदर सा गीत चला देती हूँ। गीत का बोल यहाँ से हम सब मिलकर सुनेंगे।

को जैसे पता है ना पता है, तो यहाँ से आपको बता दिया जाता है कि आज हाँ ओफे फरफोर स्टाक कर रहा है, 24 uur staking, treinen rijden niet. En heel veel busmaatschappijen die doen ook mee met de staking. Voordat u van huis vertrekt, mijn lieve mensen. घर से निकलने से पहले आप थोड़ा जांच पता कर लेना कैसे आप अपने को फरप्लाच कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखें तो

0: जिन का इंतज़ार था वो आ गया है। तो यहाँ से बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महातम जी को स्वागत कहती हूँ। आपको हार्दिक से स्वागत है पंडित जी, और बहुत से नमस्कार है आपको।
1: अच्छा, नमस्कार संता जी, धन्यवाद
2: जी।

पां नारायणो परो देव सर्वनारायण सदा ओम नीलं भुजिश्यामल कोमलंगं सीता समारोपित्वाम भागम पाणु महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च नमः स्वाय च सुतराय च मोक्षुक्षरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जाकर इच्छायुग मेरा प्रणाम नमस्कार। राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके रेडियो फान को जो मालिक है मैं उनके भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया है धन प्रचार करने के लिए। और कितने अच्छे ढंग से जा करके संताजी ने रेडियो फान को माध्यम से कितने अच्छे ढंग से हम आपको सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। जैसे अभी संकेत किया कि नौवा महीना आज है ना और कितने तारीख 9। चलो उस पे थोड़ा विचार किया जाए। 9 का क्या अर्थ है हम आप जानते हैं। जो माला हम जपते हैं ना नई खा माल तो आलफ 9 दाइन 12 क्या होगा 108 हो गए 9 ना। हमारे देह में कितने छेद है 9 छेद है। 9 छेद जगह समय आएगा तो 9 स्थान से एक स्थान से जाकर के आत्मा निकलेगा। फिर से बात दोहरा रहा हूं हमारे शरीर में भी 9 छेद हैगा और 9 दाइन 12 108 जो माला हम जपते हैं ना और जा करके प्रभु राम सबरी माँ के कई प्रकार के भक्ति सिखाए हैं। 9 प्रकार के भक्ति सिखाए कौन प्रभु राम के ने सबरी माँ के। और हम आप अपने माँ के घर में कितने महीने थे 9। हमारे दुर्गा माँ के कितने नाम अंश आलमख्त दुर्गा माँ नई खा नामन माँ के 9 स्वरूप है दुर्गा मैया के। तो हम लोग 9 रात्रि मनाते हैं और हम लोग जा करके 9 ग्रह के भी पूजा करते हैं। इसी प्रकार 9 के मैंने आपके संकेत किए ना माला 108 उसमें है दे में नौ छेद है और 9 प्रकार के भक्ति। तो और माँ जो है दुर्गा मैया के 9 नाम इसे अनेकों नाम लेकिन हम 9 नाम कहते हैं। तो आकाशवाणी के सुनल हम आगे बढ़ते हैं क्यों कुछ वेद या रामायण के माध्यम से कुछ आपके युद्ध रखूंगा। ये शरीर जो आकाशवाणी के सुन वाले ये हमारा शरीर ही मंदिर है। फिर से बात दोहरा रहा हूं हमारा आपका ये शरीर मंदिर है। हम वहां भगवान के नाम इस पवित्र बना यानी भगवान को नाम सुमरण कर करके इस शरीर को हम पवित्र बना सकते हैं। इस पवित्र समय को नष्ट ना करो। फिर से बात दोहरा रहा हूं इस पवित्र समय के नष्ट ना करो। अंतर्यामी भगवान तो समय एक साथ समाया है ना फिर ये घृणा क्यों क्यों ना हम प्रेम करें। आकाश एक है पृथ्वी एक है जल जो हम पीते हैं एक ही है ना तब फिर ये घृणा क्यों क्यों ना हम प्रेम करें। इस प्रेम का विकास करो ईश्वर की कृपा अर्जित करो और उसके प्रेम में अपने को सराबोर कर दो। आकाशवाणी के सुनने वालों इस पे ध्यान करना। एक सच्चा और बुद्धिमान व्यक्ति वो है एक सच्चा और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने वचन से पीछे नहीं हटता। परमात्मा का सच्चा पुजारी वो है जो जिस शब्द का
उच्चारण करता है, उसको पालन करता है, परमहंस वो है, परमहंस वह है जिसने सभी इच्छाओं को त्याग दिया है। सत्य यानी सभी इच्छाओं को वह सब जो त्याग दिया है, यही उस सत्य की मार्ग है। जो व्यक्ति इस परम तत्व को जानता है, उसे तय करने की क्या आवश्यकता है। फिर से बात दोहरा आकाशवाणी के सुनने वाले, इस परम तत्व को जानता है, उसे तय करने की क्या आवश्यकता है। जिस व्यक्ति ने सत्य को धारण कर रखा है, उसे किसी प्रकार की साधना करने की क्या आवश्यकता है। जो व्यक्ति संसार के छल कपट झूठ आदि से मुक्त है, सो यज्ञ आदि की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है ना? इस सत्य को हमें जानना चाहे आकाशवाणी के सुनने वालों, प्रेम स्वरूपों, आज का युग हम देखते हैं, इस युग में विज्ञान और टेक्निक जिसे बोलते हैं बहुत आगे बढ़ते हैं ना, उसके इंतजाम क्या होते हैं, पर इतनी उन्नति करने पर भी मानव एक ऐसी रोग से पीड़ित है जिसकी कोई दवा नहीं है। ये केवल हर देशों में है, सारे विश्व की यही दशा है। कुछ लोगों की ये बीमारी बढ़ गई है, कुछ लोगों के बीमारी के बीच से निकल रहे, और कुछ लोगों के लिए अभी इस प्रारंभ यानी कुछ लोगों के लिए अभी शुरुआत हुआ है। ये बीमारी क्या है, इस पे विचार करना, ये बात हमारे ऊपर भी लागू होते हैं आकाशवाणी के सिग्नल। ये बीमारी क्या होते हैं, ये बीमारी है अहंकार। इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। अहंकार का मुख्य कारण क्या है, इसका जन्म अविद्या के कारण होता है। इसका कारण है राग या इच्छा। ये राग कुछ समय के बाद स्वयं ही रोग में बदल जाता है। राग का अर्थ क्या है, इस शरीर को और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु को अपना समझना, यही राग है। इस प्रकार के अधिकार भावना से समर्पित ये अहंकार इस रोग को और भी बढ़े और बढ़ा देता है। इस स्थूल शरीर को अपना समझना ही अहंकार है। ये समझना कि इस स्थूल शरीर से संबंधित जितनी वस्तु है सब मेरी है, ममकार है। अपने इस अहंग से इस यानी फिर से बात दोहरा आकाशवाणी के सुनाले, अपने इस अहम को होकर व्यक्ति अंधे के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या इस विशेष रोग का कोई उपचार है, इससे बचने का एक मार्ग है, इस रोग की औषधि, इस रोग के दवा है विराग का अर्थ है। राग से रहित होना, तुम विराग की प्रकृति समझ जाओगे तो उसको कैसे प्रयोग किया जाए ये भी जानने लगोगे। यदि तुम इस राग तत्व को प्रवृत्त का गहराई से अध्ययन करोगे तो तुमको ज्ञान होगा आकाशवाणी के सुनने वालों। और जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, उसके लिए तो ये धर्म ग्रंथ एक भार ही है, जिसमें वैराग्य का भाव है, उसके लिए इन ग्रंथ का कोई अर्थ नहीं है। अशांत व्यक्ति के लिए उसका मन ही बहुत बहुत बड़ा बोझ है। जिस व्यक्ति में आत्मा ज्ञान नहीं है, ये शरीर ही उसके लिए भार बन जाता है। इन्हीं कारणों से हम न जाने कितने प्रकार के रोग और समस्या के शिकार हैं। पवन को बांध
लेना और आकाश को विभाजित कर देना एक बार संभव है, संभव हो सकता है, पर प्रेम स्वरूप आकाशवाणी के सुनने वाले मनुष्य के मन की इच्छा को वश में करना संभव नहीं है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक जीवन में हमें आत्म सिद्धांत को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि तुम मछली की भांति जल में प्रवेश कर सको तो सागर का जल पीना भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। संसार के पर्वत शिखा को पार करना संभव है। अग्नि को भी भोजन बनाकर ग्रहण किया जा सकता है, किंतु वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मन से रहस्य को जानना कठिन है, किंतु मेरा समझ में मन को वश में करना अत्यंत सरल है। यदि तुम संपूर्ण लगन से साधना में लगो रहे तो निश्चित रूप से ये संभव है। प्रकाशवाणी के सल मन जो है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपके बीच में प्रस्तुत किए, इसमें भगवान के नाम सुमरण करते हुए तो जाकर हमारा मन जो है वो शांत होगा। प्रकाशवाणी के सुनने वाले, जैसे मन जो है हमें, वो आपको भूख लगते हैं ना, हम भोजन करते हैं, लेकिन मन के भी भोजन होना चाहिए। मन को भोजन किस प्रकार होते हैं? भगवान के गाथा हम सुनते, अच्छा कर्म जो हम करते हैं तो मन हमारा भोजन प्राप्त करते हैं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले युवाने द्वारा अपना पौरचर में विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु भाग्। हरि ओम। शांति शांति शांति। हरि ओम।

यहाँ से हमने श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारविंद से सुंदर सा कथा, और कितने अच्छे ढंग से हमको समझा दी है कि ये नौ का मतलब क्या है। तो बहुत अच्छा लगा जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऐसे ऐसे हम सुनते हैं, ऐसे ऐसे अपना ज्ञान बढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे हमारा पंडित जी आते रहेंगे और हमारा ज्ञान जो है तो हमारा तीक्ष्ण करेंगे। फाहो रेडियो के तरफ से, सभी सुनने वालों की तरफ से श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है। आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हुए।

वाकई में ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, किशोर दाजी के आवाज में मैंने रिफरमेंस ना हेल लंग तैत होर व तेत लित एंड दैट इज सो बिसोंदर ओम तो होर एंड आई हैव फेयर दर मैथ

वाकई प्रेम नगर है ये, अपना अपना घर अपना है, और निट स्टाट ओंस इन द वेग, निट स्टाट ओंस इन द वेग ओम er een mooie dag van te maken, nog regen of wind. Ja, en dan gaan we gewoon lekker door.

ऐसा हो जाता है कभी मातम होता है, कोई बिछड़ जाता है या रिश्ता टूटता है, तो घर घर तो रहते हैं पर वो रौनक नहीं रह जाता है। तो ऐसे में ऐसे ऐसा गीत याद दिलाता है, दिल तड़पाता है। Oprecht zijn is de mooiste manier om anderen te respecteren. Mogen uw dag geleid worden door rechtvaardigheid en goedheid.

हफ्त खलित जा मुझे अब याद ना आ, किशोर दा जी की आवाज़ में। हाय मेरे दोस्तों, स्लेक्ट वेर बस्तात नीत द परफेक्ट दाग ओम आलस ख्लात त स्ट्रेकन रुस्तग बगेन एन देन कोम द रेस्ट फन सेल्फ स्ट्रेक द स्ट्रेस रुइट मेने लीफे मेंसे नीत द क्लेरन या। En wij wensen jullie allemaal, waaronder ik ook, een prachtige dag vol vrolijkheid, mooie momenten en positieve energie. Maak er iets moois van uw dag.

0: सुनने वालों नमस्कार, ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और हमारे आज कार्यक्रम में सहयोग दे रहे श्रीमती खैर लिंदा जी और अनास्तासिया जी। एक कार्यक्रम जो हॉलैंड में होने वाले है, जिसमें स्पिरिचुअल के अंतर्गत में सुनाया जाएगा, बताया जाएगा। और सद्गुरु जी जो फ्रेंच यानी कि फ्रांकरेक से यहाँ आने वाले हैं, तो हमारे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं अनास्तासिया जी। अनास्तासिया जी, आप जो कहते हैं हम सबको कि हम गोरे लोग, और कैसे आप हिंदी कितना अच्छे से बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है।
1: धन्यवाद।
0: बड़ा धीरे से आपने कहे कि धन्यवाद। कहने के तात्पर्य यह है दोस्तों, सुनने वालों, अनास्तासिया जी कुछ सालों जो भारत में रहे हैं और भारत में रह करके अपना भाषा हिंदी खूब अच्छी तरीका से बात कर लेते हैं और उसमें मराठी भी बात कर लेते हैं। तो अनास्तासिया जी, पहले अपने बारे में हम सबको सुनाइए कुछ।
1: हाँ, तो मैं जब 4 वर्ष की थी तो मेरे पिताजी और माताजी एक आश्रम में, गोवा में स्थित एक आश्रम में रहने के लिए गए थे। और मैं 4 वर्ष की थी तो तब से वहाँ 15 साल रहती थी आश्रम में, गोवा में। मैं स्कूल में जाती थी वहाँ गोवा में, और वहाँ से मैंने मराठी हिंदी दोनों सीखा। मुझे भी गोवन लैंग्वेज कोंकणी भी थोड़ी आती है। मैं जन्म से साधना में साधना कर रही हूँ। मेरे पिताजी माताजी मेरे जन्मे के पहले साधना करने का शुरुआत किया था, और मैं साधना में बड़ी हो गई। और मैं छोटीपन से भगवान पर बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण बहुत बहुत प्यारा है और मैं उनके साथ बहुत बात करती हूँ। तो ये मेरे बदल थोड़ा थोड़ा है।
0: अनास्तासिया जी, आपने अति सुंदर रूप से ये संदेश को रखे कि भगवान से प्रेम करना कैसे होता है, और इसी अंतर्गत में और जो जाकर के सद्गुरु जी हमारे देश हॉलैंड में आने वाले हैं, कार्यक्रम जो होने वाला है सेवाधाम में मंदिर में, हम सब अभी सुनने वालों जरूर उसके बारे में बात करेंगे कि कई बजे और कब और कहां पर कार्यक्रम को रखा जाएगा। पर अनास्तासिया जी, हमें थोड़ा से संदेश दीजिए कि सद्गुरु जी जो अपने बचपन जो फ्रेंच में जिनका जन्म हुआ नेहतिन एनन शरीफन तक में, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, उनके जब बायोग्राफी जब देखा जाए कि बचपन से उन्हें कुछ था भगवान के रुचि, थोड़ा से उसका और संदेश हम सबको लिए रख दीजिए।
1: हाँ, तो बचपन से मेरे पिताजी को भगवान में बहुत विश्वास था। लेकिन हमारे माता पिता, उनके माता पिता भगवान में बहुत विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मेरे मेरे पिता के माता वो जीसस पर बहुत प्रेम करते थे, और वे पिताजी को भगवान के बारे में बहुत सुनाई देते थे। फिर पिताजी बड़े होते होते एक सुपर मॉडल बन गए, और सुपर मॉडल में वो काम करते थे। और फिर जापान में गए, जाकर उनको मेरे माताजी से मिलना हुआ। मेरे माताजी तब साधना में शुरू उन्होंने किया था, और फिर माताजी ने बाबा को, सदगुरु को साधना में उनके बारे में सब बताया। और फिर तब से पिताजी को ऐसे लगा कि अब मुझ मेरा जो सर्च था, या उनको बहुत ऐसे लगा लगता था छोटेपन में कि मुझे कुछ तो चाहिए। और फिर बाद में उनको लगा कि अब मैंने ढूंढा जो मुझे चाहिए था। और फिर वे साधना करते करते, जैसे मैंने बताया, जब मैं 4 वर्ष की थी तो हम आश्रम में गए थे। अभी मैं 22 इयर्स की हूँ। वहाँ साधना करते करते वे ऐसे सारे नाम का एक, जैसे गोवा में सनातन संस्था ऐसे नाम का ये है, ऐसे सारे एक ब्रांच है उससे। तो मेरे पिताजी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उनने SSRF को सब संभालने का। और SSRF क्या है, वो सनातन सनातन साधना के तरह, लेकिन सब बाहर के लोगों के लिए। लाइक इंडिया में भी साधक आ सकते हैं SSRF में, लेकिन अब्रॉड ऐसे सब विदेशी लोग ऐसे जो साधना कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी में थोड़ा अलग है इंडिया के तरफ। तो पिताजी ने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको सबको साधना कैसे अच्छे से कर सकते हैं ऐसे सब सिखा रहे थे। नाम जप कैसे करना, भगवान को कैसे बुलाना, हमारे जो दोष है वो, हमारे जो बेस जेलसी ऐसे सब सब जो दोष है हमारे में, तो वो कैसे निकाल कर गुणों को अंदर लाने के लिए ऐसे सब कैसे। तो फिर दूसरों लोगों को भी इस साधने बारे में कैसे बुलाना, कैसे बताना, कैसे उनको वो जो माया है उससे बाहर निकालने का, उनको उनको चैतन्य पॉजिटिविटी ऐसे सब लाने के लिए कैसे साधना करें कर सकते हैं। नाम जप, दोष निर्मूलन, ऐसे सब छोटे छोटे जो है वो कैसे सब अच्छे से करने का, और भगवान के चरणों में कैसे जा सकते हैं ऐसे सब, वो सब विदेशी साधकों को, सब साधु सब लोगों को सिखा रहे थे। और वो करते करते हमारे जो गुरु है इंडिया में, उनके गाइडेंस और उनके मार्ग से मेरे पिताजी 2018 में सदगुरु तक पर पहुंचे। और अभी हम एक जर्मनी आश्रम कर रहे हैं। तो 2021 में, सॉरी, हमारे गुरु ने बोला कि जर्मनी में हम आश्रम बनाएंगे। तो पिताजी को पूरे जर्मनी को फिर कर उनको बोला कि आप एक आश्रम ढूंढो। तो 2 वर्ष मेरे पिताजी पूरे जर्मनी आश्रम ढूंढने के लिए उनने प्रवास किया। और फिर 2022 में हमको आश्रम मिला, एक जर्मनी आश्रम अलरोडे में। तो अभी मेरे पिताजी उनके रेनोवेशंस और साधकों को साधने के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं आश्रम में, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ ले रहे हैं। तो ये थोड़ा मेरे पिताजी के बारे में है।
0: बहुत अच्छा रूप से आपने ये संदेश को रखे कि देखा जाए कि आपका यानी कि सद्गुरु जी जो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने सिर से लेकर के हम सब के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं हमने जीना सीख लिया, पर जीना असलियत में जहाँ पर आनंद को प्राप्त कर सके तो साधना, और कैसे साधना होगा इस अंतर्गत में सद्गुरु जी जो हॉलैंड देश सेवाधाम में आने वाले हैं। अनस्तासिया जी, मैं आपसे ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि सेवाधाम में, जैसे कि हमने सुने हैं कि 17 को आप लोग फ्रेंच से छूटने वाले हैं और 18 को आप लोग नेदरलैंड्स यानी कि डेन हाग में पहुंच जाएंगे, तो कई बजे और कहां पर ये कार्यक्रम रखा जा रहा है?
1: तो 19 सितंबर को हिंदू सेंटर सेवा धाम इस जगह एक प्रोग्राम चलेगा।
0: सेवाधाम जो डेन हाग शहर में है अल्बर्ट प्लेन पे, और वहां पर ये कार्यक्रम चलेगा 19 सितंबर को।
1: हाँ, वो एक दिन, और दूसरा दिन भी 20 सितंबर, दो दिनों में वो प्रोग्राम होगा।
0: और अनस्तासिया जी, जब देखा जाए कि 19 सितंबर शनिवार होता है, तो कितने बजे से कितने बजे तक कई सेशंस रखा जाएगा, इसके बारे में हम सबको जरूर बताइए।
1: हाँ, तो पहला सेशन 10 o'clock इस बजे होगा,
0: 10 बजे सुबह में।
1: हाँ, 10 बजे सुबह में शुरू होगा। मैं मेरे पिताजी को हिंदी में इंट्रोड्यूस करूंगी और फिर गणेश श्लोक बताऊंगी, और फिर बाद में पिताजी श्री राम नाम जप का एक मेडिटेशन सेशन लेंगे। उसके बाद हम, मेरे पिताजी एक्सप्लेन करेंगे कि नाम जप कैसे चलता है और कैसे हमको लाभ मिलता है नाम जप करते, और किसी को भी प्रश्न या ऐसे कुछ पूछना है तो इस टाइम में भी पूछे सकते हैं।
0: और देखा जाए ट्रांसलेट करने वाले यानी कि अनस्तासिया जी जो रहेगा, और हर रविवार को वहाँ हम लोग सेवाधाम में मंदिर भी लगाते हैं, जो कि दिन में 2 बजे से शुरू होता है 6 बजे तक, और इसमें कार्यक्रम रविवार का कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक है?
1: रविवार का कार्यक्रम 10 से 12 बजे
0: तक। तो दोस्तों, सुनने वालों, आपने सुने हैं कि हमारे देश में और हम सब को और संदेश देने के लिए सद्गुरु जी, जिन्होंने बहुत से तपस्या किया है, बहुत सा और फ्रंटवर्डिंग भी पाए हैं, और जाकर के हमारे साधना के लिए, स्पिरिचुअल के लिए कैसे किस प्रकार से हम सब उस पे और ध्यान दे सकते हैं, और इस प्रकार से जो यहाँ डेन हाग में कार्यक्रम होने वाला है। और अनस्तासिया जी, हम सब के जो अभी और भी संदेश सुनाने वाले हैं, कहने के तात्पर्य यह है कि हम अपने पितरों के बारे में क्या कर सकते हैं। अनस्तासिया जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और सदगुरु जी हम सबको क्या संदेश सुनाने वाले, क्या हम सबको अभी से कुछ आप सुना सकते हो?
1: हाँ, तो अब थोड़े दिनों में पितृ पक्ष आने वाला है। तो पितृ पक्ष क्या होता है? जब पितृ दोष हमारे ऐसे बहुत लेवल्स होते हैं, तो पाताल होता है, फिर भूमि, फिर भूमि तत्व, फिर ऐसे दूसरे दूसरे लेवल्स होते हैं भगवान तक। तो ये पितृपक्ष क्या होता है? जब पितृ दोष हमारे तो रीजन होता है, वहां वे नीचे ऊपर से नीचे आते हैं और उनका हमारे पर इफेक्ट और होता है। तो उन दिनों में हम कैसे पितृ दोषों को के जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं उनसे कैसे हम सेफ रख सकते हैं? तो हम कैसे सेफ रख सकते हैं हमको? तो एक होता है नाम जप करने का, श्री दत्तात्रेय का। तो दत्त श्री दत्त जी पितृ दोषों को यहाँ से भगवान तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इनका वो भगवान होता है। तो उन पितृ पक्ष के समय रोज दत्त जी का नाम जप कर किया तो हमको पितृ दोषों से कुछ होता नहीं।
0: बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं अनस्ताशिया जी, हम सब यहाँ पर कभी कभी लोग अपने मुसीबतों को लेकर के और हम कहीं मंदिर में या कहीं मुसीबत के जहाँ पर पहुँच जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता है और हल नहीं मिलता है, और जबकि हमारे अपने हमारे पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इस पे जो हम ध्यान दे तो हम उससे कितना बच सकते हैं ना। हम देख रहे हैं हमारे सद्गुरु जी भी कुछ शायद हम लोग के साथ और बातने वाले हैं, तो हो सके तो सद्गुरु जी से और हो पाए तो हम सबको सुना दे। सद्गुरु जी को भी नमन करते हुए अगर हो सके तो आप थोड़ा से कुछ संदेश सद्गुरु जी से हम सब के लिए यहाँ के रेडियो के वास्ते कुछ सुना सकते हैं?
1: हाँ, तो ये मेरे पिताजी हैं सद्गुरु सीरियक वाले, वे अभी हॉलैंड में आएंगे प्रसार करने के लिए। उन हम सबको नाम जप और साधना के बारे में बताने के लिए अभी पिताजी थोड़ा एक छोटा मैसेज बताएंगे साधने के बारे में।
2: नमस्कार संजय, I live in India for almost 12 years. Come to India for more than 25 years now, since 1999, and live in ashram to practice the beauty and knowledge of Sanatan Dharma and India. And this for us is not making this knowledge available for people in the West, because the importance of sadhana, spiritual practice. Because even many Hindus who live abroad, even though they have learned the all this sanskar of shastra, of the science of spirituality, they actually are not practicing it, or they don't know all the knowledge also. So I think this is also why we are traveling in caravan, speaking in temples, to share the knowledge. Because people from India, or who have born in India, or grow up, or born also outside India, they have that understanding, that knowledge, but they don't know sometimes the why and how, and how to put it into practice. So this is in a way what we will be sharing also in the temple. And this is a different lecture also. I'm traveling across the world and as we're doing lecture in different temple also. And they understand immediately the knowledge, like we will be speaking about Pitru Dosh, about this concept of departed ancestor. By God's grace, we all know this knowledge. And the West people, we have to start from scratch, from zero, because they have no concept of the concept of Pitru Dosh. And sometimes the solution is very simple, but we have to do it into practice. It's not only rituals, of course there is rituals, but there's chanting also, chanting like what we call Nam Jap or Namasmaran of Sri Gurudev Datta. Myself, that was my biggest anubhuti, spiritual experience, before I went to India, because whatever I was experiencing, didn't know. And I was smoking, and within 3 days when I started chanting Sri Gurudev Datta, I stopped smoking within 3 days.
0: So there is a lot of things, so you can, by chanting, you can progress in your life.
2: Of course, not only you make progress, but you also give momentum to your departed ancestors. That's what people don't know. You free also your ancestor who are in a way in Vuva Lok or the different Lok, to be able to move on and get reborn. So not only your problem can be alleviated, and at the same time you give them that momentum. So that's why also there is this ritual, puja or ritual that can be done. But puja or ritual has limitation. There are a few places in India where this special ritual is done for ancestor. But the chanting, namja, it is in our hand. And it is something we can do. And that is the power of Sri Gurudev Dutta. We have even published on our website. That's why we have a website called ssrf.org. And we have published more than 900 articles of all the knowledge from actually based on Hinduism. And of course, the science of spirituality. And we explained a lot about this concept of Pritu Dosh, and so many testimony we have from people across the world and religion. They were able to overcome many problems, addictions, depression, insomnia, the different that because the root cause in today's time, often the problem that people see is that it is addressed at the physical level or psychological level. But sometimes the root cause may be actually spiritual in nature, and people don't know. All the modern science is not taking that into consideration, except, of course, in India, where that knowledge of Pritu Dosh is known, but not all known in all India.
0: We are very happy that Sadhguruji is visiting Holland at Den Haag Sewadham. So I'm very glad to meet Sadhguru, and so I think also everyone that are tuned now at Fahon Hindustani Radio shall be at Sewadham at 19 September. There are sessions 19 September and also sessions Sunday 20 September. So I cannot wait to see you, Sadhguruji. Namaskar.
2: Namaskar, and see you in a few days.
0: नमस्कार अनस्ताशा जी आपको भी नमस्कार कर कहते हूँ और ये कहना चाहूँगा कि आप मराठी में नमस्कार कर देना प्लीज
1: हाँ ठीक है नमस्कार माझा नाव अनस्ताशा मी सगळ्यांना माझा भावपूर्ण नमस्कार सांगते आणि आम्ही तुम्हाला हॉलंड मध्ये भेटू नमस्कार
0: धन्यवाद सुनने वालों हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये संदेश जरूर आप सुन करके इस पे ध्यान देना क्योंकि ये कार्यक्रम एक भी सुंदर कार्यक्रम होते होने वाला है जो स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत में सेवाधाम मंदिर से और रखा जा रहा है सातरदाख नई खंतीन सितंबर को 10 बजे सुबह से कार्यक्रम होने वाले हैं और उसके बाद में रविवार को जो 10 बजे सुबह से भी कार्यक्रम सेवाधाम मंदिर में होने वाला है नमस्कार आप

फिल्म जीवन धारा से ये सुंदर सा गीत है देखे तो, जी हाँ इसका नाम है जीवन धारा, फिल्म जीवन धारा से।

0: पे सुब्रमण्यम जी के आवास में इसका नाम है जीवन धारा जिसका कोई नहीं किनारा।
1: समय का उड़ता पंच
0: इस बार सुनेंगे नितिन मुकेश जी के आवास में। नितिन मुकेश जो

आपने तो संगीत में खूब अच्छा संदेश तो हमने यहाँ से सुन ली कि समय बड़ा बलवान। फिल्म का नाम घर परिवार, फिल्म घर परिवार से ये गीत निकाल दिया गया है आपके वास्ते। और यहाँ से मिलकर हम और आप और हम, आप और हम मिलके यहाँ से लुफ्त उठाए हैं।

गीत जो हम सुने और उससे कुछ सबक सीखे। मोक्ष, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष ये है कि ना किसी को पाने की चाह और ना किसी को खोने का डर।

0: अरे अरे ए, ए, ए, ए, ए।
1: एक से एक लाजवाब गीत आपके लिए यहाँ से पेश हो रहा है।
2: अरे, अरे।

सलम आदमी और इंसान से ये सुंदर सा गीत हम सुने ओ नीले पर्वतों के धारा। और इस बार हम सुनेंगे फिल्म नागपंचमी से मैं नदिया की धारा।

धूल का फूल से ये सुंदर सा गीत, मैं तो भूल गई थी ये गीत को, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा। और इस बार हम सुनेंगे जिंदगी एक्स।

हम हरियाली और रास्ता से मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में सुने हम निकंती की पिक्चराइज किया फिल्म है। इस बार सुनेंगे फिल्म ब्रह्मचारी से।

हमको मोहम्मद रफ़ी जी साज और संगीत शंकर जय किशन। इस बार हम सुनेंगे नीले गगन के तले फिल्म हमारा से महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

गगन के तले, नीले गगन के तले सुने हम, और उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत।

give me a mawsome, mawsome, lovely mawsome. थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है इस बार बरसात की एक रात से लता जी की आवाज में।

फिल्म धुरंधर से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

पीएस रावत, नहीं नहीं नहीं म्यूजिक दिया है पीएस रावत और संगीत का लिखने वाला है शैतान सिंह। शैतान सिंह ये गीत लायरिक्स जो लिखे हैं और गायक है प्रकाश रावत, प्रकाश रावत जो रावर, जी हाँ, दिल में।

अच्छा लगता भी ऐसा नया संगीत सुनने के लिए, और ये सब सेलेक्ट किया है आपके लिए और पेश हो रहा है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: Very, very nice. सुनने को
1: सारेगामा कारवां, the perfect gift for you.
0: सुनने के लिए बहुत उत्सुक रही आप भी, आपने फोन करके और कहा, तो यहाँ से आपके लिए भी

थुन फिल्म सैयारा से निकाला गया है। मिथुन लेखक है ये गीत का और सिंगर है अरिजीत सिंह। ये भी एक बहुत सुंदर फिल्म है, आपने देखे होंगे तो जरूर से देखना। कभी काल के ये सब पिक्चर जो है बियोस्कोप में भी इसको रिलीज किया जाता है यहाँ हॉलैंड में, तो जरूर से वक्त बनाकर जाकर देखना। बड़े पर्दे पर फिल्म देखना, पिक्चर देखना कुछ अलग है, और घर पर बैठकर देखना ये भी एक खास है।

ये आंखें ये आंखें गाकर सुना दी हमको शाहिद मालिया, शाहिद मालिया के आवाज़ में ये सुंदर गीत हमने श्रवण की है। और गीत का लेखक जो है शिल्पा अग्रवाल, शिल्पा अग्रवाल ये लायरिक्स जो लिखे हैं भी सुंदर लगता है सुनने के लिए ये नए गाने जो हैं, इसमें अपना रंग है, अपना चमक है। समय रुकने वाला नहीं है, जो रुक जाओगे तो पिछड़ जाओगे, अंतविकलिंग में पीछे रह जाओगे, पर समय तो जाएगा, तो वक्त के साथ चलना है, यही समझदारी है।

दूंगी हो माही रे, कलाकार इसमें है शाहरुख खान। ये आज के दौर के गीत और संगीत है। मेरे बन के रहना तू,

बन के रहना तू पेश किया गया। इस बार हम सुनेंगे अरिजीत सिंह जी की आवाज के, अरिजीत सिंह जी की आवाज में मुस्कुराने की वजह तुम ही हो।

सजनी तेरे बिन सजना तेरे बिन तेरी याद सतावे, अरिजीत सिंह जी के आवाज़ में। अरिजीत सिंह जी भी कितने शानदार गीत गाए हैं, दिल छू जाने वाले गीत हैं।

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मां खेंता व्यक्ति 159 बाय ऑटो फॉर बिड्रेव अमालिया। सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स। Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 418 8873. Autoverhuurbedrijf A

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं। फिल्म फर्श में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वाडेकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वाडेकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाहें यार ने कि एक ऐसा जादू भर दिया, और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए शिकार हो के चले, ये गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से। माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाइए ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। और तो गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

So, गाने से पता चलता है स्टॉकवर्थ फ्रॉम प्लन. लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं. योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर. बहरहाल फॉन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की. तो अगर ये गीत पेश किए तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद.

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में, फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर, लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस के तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ, स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि गंगा ये गीत चलाने वाला है। ये नहीं करेंगे, चलिए।

ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं, क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

श्री रामचंद्र के साथ परिचितल का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेलाल में से निकाल कर। अब ये तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमारे को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूल ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो चुन किए हैं, इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

दिल में प्रेम प्यार मोहब्बत के जगह मिले हैं। वह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए ये गीत हमने प्लेयर में और रखे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है। नाग पंचमी में से नेगेटिव तुम्हें सही सुनता

वाह क्या बात है, यह शानदार गीत पेश हुआ हमने चलाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, चलो ये गीत सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

कितना प्यारा है ये चेहरा, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। गीत हम तो रख दिए हैं प्लेयर में, लेकिन इसमें कितना आधा झूठ आधा सच, ये गीत के बारे में इस वक्त मुझे पता नहीं है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन कितना सच कितने झूठ पता नहीं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए।

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रवि साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फकीरा में से निकाल कर 1976 निकली थी सैफ तक का ये गीत, आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलिक मान ने लिखा। लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश किए ओ फरफान हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

है दीवाना एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज़ में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं, चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई, चलो सुनते हैं। लेकिन तख्त का ये गीत है।

अच्छा, जुदाई के बात यही थी, हमें तो पता नहीं था। बहरहाल हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले सोनू निगम जी। सोनू निगम जी नेकन तीन सेशन सेस्त का ये गीत है, चलो सुनते हैं।

नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शस्त्र जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नहीं गंधक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नहीं गंधक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चला गए एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब को बहुत बेचैन करता है। रफ़ी साहब जानना चाहता है ये खिड़की बंद क्यों है तो सुनिए।

अच्छा तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की, उन्होंने आपको बताए हो फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है।

तुम्हें देंगे ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फॉर हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से है।

चांद की जेवाई रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सेफन से हस्त का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं वो है ये गीत, चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफी साहब की आवाज़ में निगदी एन सही बंद 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। स्वागत करते हुए चलिए पेश कर रहे हैं ये गीत।

देखती हूँ जिधर, फिल्म हांगकांग में से। जी हाँ, फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं ये शानदार गीत और हमने पेश किए है ओपन एयर के सांच पर निगतिन त्वेयन सस्त का ये फिल्म है आशा जी की आवाज़ में। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। ओ क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

सुन जा, ऐ घटा काली घटा बस एवरग्रीन, किशोर कुमार और लता जी हाथी मेरे साथी में से निकाले निकलते ए नसीब तो का ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगला गीत हमने प्लेयर में आपको पता है हमने क्या रखे हैं, चलो सुनते हैं कि लता जी, जी हाँ लता जी की क्या मुसीबत है, लता जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं, वो खुद कह रही है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं। मजा ही आ रहा है या नहीं, इस बात की मजा आ रहा है नहीं पता।

0: तो आपने सुने लता जी ने आपसे कहें कि उन्हें कितना मज़ा आ रहा है, ये शानदार गीत हमने निकाला फिल्म राजा जानी में से नेक दिन तुम से फिर तक का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और अभी हमने गीत चलाए थे हाथी मेरे साथी की, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है, ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग इस तरह से।
1: हल्की हल्की मुलाकातें थी

0: ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाएं, कुछ ना कहो साधना सरगम और अभिषेक जी, नहीं साधना सरगम और शान, साधना सरगम और शान शंकर एहसान लोई के साज पर यह टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, फिल्म 10 नंबरी तो आप देखे होंगे, मनोज कुमार की फिल्म है, मुकेश जी की आवाज़ में और लता जी। चलो सुनते हैं, इन दोनों को कितना दर्द है मुझे भी नहीं पता, मिलकर सुनते हैं।
1: मुझे दर्द रहता है,
0: अच्छा?
1: दिल में दर्द रहता है
0: इतना?
2: अच्छा?
1: मुझे

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। आपने बीच बीच सुने होंगे यह गीत कि दर्द मिटने का क्या दवा है, क्या सुझाव है, क्या आदफिस है, बस गले में रस्सी बांध लेना और खींचवा लेना। बहरहाल ये मज़ेदार गीत हम आपको सुनाए और फिर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ते पे सत्ता।

मैं आग दिल में लगा दूंगा एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म सत्य में सत्य पे सत्ता में से निकाल कर आर डी बर्मन के साज पर हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए आप ही हैं और मैं भी हूँ और चलो हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। और फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म शिकार में से निकाल रहे हैं नेघंतीन अख्तन सस्तक 1968 का ये गीत है। शंकर जय किशन के साज पर

तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, फिल्म शिकार में से निकाल लेने के दिन। अख्त सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुनाए। चलिए, जानी दुश्मन वो भूत अख्त फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे, संजीव कुमार का। जानी दुश्मन में से निकाल रहे हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी चलिए आपको सुना रही है इस तरह से फिल्म जानी दुश्मन। निगतिन नई खनन से 1979 का ये गीत।

लगा जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आपको सुनाए नेक दिन नेक नसीब में तो का ये गीत फिल्म जानी दुश्मन में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है

जो भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। दफ्तर का तार का नंबर 0736 2267 4 और स्टूडियो का तार का नंबर 0736 2267 4। खास फरमाई से हो या तो जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर, या तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट हो या तो शोज वगैरह, उसके बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है हम लोग आप मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे यार उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप अजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेलत एडेंस कांतोर यूरो अपनी सीवन तक 356 2020 47 40। जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? De Guzaris bent u die weten kia ja raha hai. Kia bhi jild se jild Fahun Hindustani Radio ka member bane. Au roko bhi banai. Isi tarah hum logo ke baare mein charcha karte rehna, reklama banate rehna yaro. Koti koti dhanyavad iske liye and natürlich love you all. वरा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं कुछ नए नए आवाजों की तरफ हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, और अति सुंदर बयान कॉफर सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं न्यू स्टाइल पर इस जमाने का मशहूर गायक द ग्रेट सूरज जोगन, सूरज जगन के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। ही इज ऑल्सो अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड ग्रेट सिंगर। तो मिलकर सुनते हैं दम मारो दम ऑफ सूरज जगन स्टाइल। यस yes.

डमारो डम इन अ न्यू यश सूरज जगन के स्टाइल में ये अति सुंदर एवर ग्रीन सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना आज के ये हसीन कार्यक्रम में जो आप श्रोताओं की सेवा में लाइव प्रस्तुत हो रहा है। अगला बयान एक और महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो काफी दिनों बाद कुछ निकाला है द ग्रेट कैलाश खेर के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान लिखा है महान लेखक इस जमाने का ग्रेट कुमार जी और कंपोज किया है म्यूजिक डायरेक्टर मीत ब्रॉस अंजान। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे निशान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Great song, Mere Nisha, from the movie Oh My God. Mahan Gayak, the great Kailash Kher ke madhur awaaz mein, Mahan Lekhak Kumar ka likha hua yati sundar bayan, composed by Meet Bros Anjan. Found Hindustani Radio pe aap chun hai, रात्रि का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं. अगला बयान सुनाने को जा रहे एक बार फिर ये उभरता हुआ नौजवान कलाकार जो टॉप टॉप सॉन्ग्स अपने ही स्टाइल में एक नया कुर्ता पहरा देता है. तो मिलके सुनते हैं आवारा हूं को क्या धुन बना दिया ये द ग्रेट सूरज जगन.

0: waaraan hoe
1: Amazon shopping app
0: in een nieuw jasje en gestoken door Suraj Jagan, mahan gayak hamare Bollywood film industry ka is zamane ka. अगला बयान एक अति सुंदर बयान है नौजवान कलाकारा स्नेहा भट्टाचार्या जो नए नए अपने कदम रख चुकी है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में. लाइव रिकॉर्डिंग अति सुंदर बयान पहली जिंदगानी, मिलकर सुनते हैं.

क्या बात है, अति सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, और वो भी स्नेहा भट्टाचार्या के मधुर आवाज में। फाइनलिस्ट ये थी हमारे सारे गामा पा कॉन्टेस्ट 2023 में, en ze eindigde op de vijfde plaats, maar wat een stem zeg. Aglabian is het raakje kuchinene, awaze, nene, kalakare, apesunre. Hey, Sunil Shetty kalikhawa ye ati sundar bayan. Ek baar fir sunan ko ja rahe hai aap sabhi ko. Suraj Jagan, Neha Kapoor aur Harun Gavin ne milkar beautiful song, Another Jacket.

ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अति सुंदर कंपोजिंग बाय ये अति ब्यूटीफुल और जबरदस्त टैलेंटेड गायक है ये हमारा, जो अभी आप सुना श्री सूरज जगन जी के मधुर आवाज में, एंड म्यूजिक रेयरेंज बाय की सी लॉय श्री। क्या बात है, वाह। तो मेरे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त हो चुका है कुछ ज्ञान के बातें अब हो जाए। पुराने जमाने और कुछ इस जमाने के विद्वानों, कुछ मशहूर मशहूर लोगों और कुछ पढ़े लिखे लोगों ने फ्रीहेट आजादी छुटकारा के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखकर चले गए हैं। कुछ जीवित है और कुछ भी भगवान को प्यारे हो गए, और ये बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ, यही आशा उम्मीद लेकर कि कुछ ना कुछ सीख तो हम लोग इन बातों से जरूर प्राप्त करेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। कहकर गया है श्री क्लोद अफलाइन, है वॉज फ्रांस क्राइफर, आइटखीफर एंड डिक्टर,

हंस के मिलना था उसकी आदत, मगर मशहूर गाने वाली इस जमाने का उभरती हुई कलाकारा निशिता शर्मा जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप सुना। म्यूजिक कंपोज बाय अमजद नदीम अमीर और अति सुंदर बयान को लिखा है अजीम शिराजी। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम में आप लोग एक आखिरी बयान सुनेंगे और वो सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक और ही बहुत ही मशहूर गायक इस जमाने का, जो कुछ पुराने नगमे को नए धुन में और नए रिदम के साथ सजा देता है। रंग बरसे सूरज जगन ने इस तरह से सजाया है।

ये सुनील शेट्टी की आवाज है जो स्पॉन्सर है ये महान गायक सूरज जगन का, तो उन्हीं की आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना इन एन अंदर सूरत रेतम यश। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं ये तक था आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। यही आशा और उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारों की जस जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, आप सभी को जरूर कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 9 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ। गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम लेकर, और उसके बाद कुछ पुराने नगमे आप सुनेंगे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए। तो अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद आप श्रोताओं को सेवा करने वाला है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का महान अनाउंसर साथी मैस्त्रो अमित कुमार जी, और उसके बाद बड़का भैया दिलीप रामाधीन जी, और आगे के रात्रि का कार्यक्रम जरूर सुनते रहना, मजे लेते रहना। और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो बुधवार रात्रि 9 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा सिर्फ पुराने नगमे लेकर। तो मुझे आप सभी आज्ञा दे, अलविदा कहता हूँ आप सभी को, और मिलते हैं अगर जिंदगी ने साथ दिया बुधवार को। जाते जाते कुछ गुनगुना देता हूँ हमेशा की तरह ना, तो आज है ये

सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए. बाय बाय, लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. सोसो लोबी लोबी अंक ब्लेसिंग एंड टिल वी मेट अगेन आवाज के जरिए.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लेस रेडियो पर इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन एफएम पिन चैनल पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैं थील फील लेजर प्लेजर के साथ तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत हैं जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना, उपमात पर हम लोग बनाकर और जितने ही बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूं यारों कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडिस भर में नहीं मिलेगा। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल अटेंडेंस कंट्रोल यूरोप न्यूज़ीव तक ड्रिफ़ेंसेस तक 2027 जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। सूचना और सूचना पे दिया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है हमारे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से कि आने वाले होली त्योहार के उपलक्ष्य में अगर आप अपने रिश्तेदार हिति प्रेमी या तो अपने क्लंत फ्रेंड क्रिंग के लिए 25 मिनट या 50 मिनट के लिए हम लोगों का प्रोग्राम कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हो, हार्ट वेलकम। 25 मिनट के लिए आपको लगेगा 50 €, एक्स बीटीवी एंड फॉर 50 मिनट स्पॉन्सरिंग प्रोग्राम फिया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खाती 100 € एक्स कोस्टन। तो इस अनबीडिंग का फायदा आप जरूर उठाए आने वाले होली त्योहार के उपलक्ष्य में, अगर आप अपने हिति प्रेमी रिश्तेदार रन पड़ोसी कोलीखास फ्रेंड क्रिंग क्लांत क्रिंग के लिए कुछ नगमे फरमाइश करना चाहते हैं होली के निमर्स, या तो होली उपलक्ष्य के त्यौहार में कुछ आप कहना चाहते हैं अपने फैमिली फ्रेंड क्रिंग संगीत के जरिए, तो जरूर आप इस हसीन अनबीडिंग का फायदा उठाए। For 25 minutes, 50 € ex BTW maar. En voor 50 minuten, 100 € ex BTW. सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अप 070-365-2247 पर या तो अप 070-213-6598। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना, रिक्लाम बनाते रहना यारो, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। लेकर चलते हैं कुछ सरनामी संगीत आपको मैं सुनाने वाला हूं, खास करके सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक। मशहूर गाने वाला हमारे हॉलैंडिस का मैस्ट्रो संजय जोधा जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को रहे ना रहे। म्यूजिक फरमासी एक्सक्लूसिव 2024।

beautiful song, wonderful song, maestro Sanjay Chodhaji ke beautiful awaaz mein ye sundar bayan aap shrotaon ne suna. A great singer, एक और मशहूर गायक हमारे हॉलैंडिस को जो आप काफी बार सुन चुके हैं, पैदाइश हुआ है पाकिस्तान में लेकिन मशहूर हुआ हॉलैंडिस में विद द म्यूजिक फार्मेसी टू नेस्टी ज्वाला लक्ष्मण जी के साथ. मैं बात कर रहा हूँ महान गायक सागर मलिक जी को. उन्हीं के मधुर आवाज में कागज के यानी खिजा के फूल.

एक हमारे ऑरेंज का डॉन एंड ओनली मैस्ट्रो सागर मलिक जी के मधुर आवाज में थी इस सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना आज का इस हसीन कार्यक्रम में जो आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है डायरेक्ट फ्रॉम ऑन न्यू स्टूडियो नतीर ऑन द योहान रिंगर कार दिख्त बैत वाटर। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का उभरती हुई कलाकारा जो काफी नाम कमा चुकी है हॉलैंडीज इंटरनेशनल सूरीनाम देश वेस्ट इंडीज में द ग्रेट गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का रोशना बाल गोविंद जी के मधुर आवाज में हर न्यूज़ नंबर हसरते स्पेशल आप सभी प्रिय श्रोताओं के नाम

Beautiful Songs, Sunaria Psebico, Meshur Ganevali, Amarolendiska, The Great, Roshana Balgo Binteke, News Tenemarab, Srotani Suni Hasrete. अगला बयान सुनने के जा रहे हैं आप सभी को also a lady singer natürlich lady संजना को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाती है आप सभी को हाथों में मेहंदी the mix

नर्बयान बोलावे रशिया। सुनारी आप सभी को मशहूर गाने वाली उभरती हुई कलाकारा काजल भग्गू जी के ब्यूटीफुल आवाज में यह अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। म्यूजिक बाय मेजर रिकॉर्ड। अगला बयान एक अति सुंदर सॉन्ग है, इस 70s हिंदी मैशअप, और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक अति सुंदर आवाज का मालिक डगड़े प्रभात पंचू जी के मधुर आवाज में। मुसाफिर ये क्या हुआ रात कली, ये लाल रंग और क्या हुआ तेरा वादा, मिला जुला कर

Beautiful song uitgetrokken is Kishore met Peach Kiagya, de 70s Hindi mashup by Prabhat Panchu, music by King Selecta. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं और इस बार द मिस्टर के फ्रॉम हॉलैंड किरण केदार जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे ये कहां आ गए हम म्यूजिक बाय किंग सेलेक्टा

Beautiful song, wonderful song by the KK from Holland, Mr. Kiran Kedar, ye kahan gaye hum? Select a beats ke beautiful music par. Agla bayan ki taraf badhte hai aur saath hi saath ye aaj ke ek aakhri song hoga hamare sarnami sangeet ka is haseen कार्यक्रम में और वो सुनन को जा रहे हैं। अभी तो आप सुने ना मिस्टर के फ्रॉम हॉलैंड को, तो आप सुनिए मिस्टर के फ्रॉम सुरिनाम, मैस्ट्रो कविश कालका के मधुर आवाज में आदत, ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

0: नौजवान कलाकार हमारे सुरीनाम देश का, जिस पे हमें नाज है, गर्व है, मिस्टर के फ्रॉम सुरीनाम, कविश कालका जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना आज का इस हसीन कार्यक्रम में, जो आप श्रोताओं के सेवा में लाइव प्रस्तुत हो रहा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हम लोग इस वक्त नया स्टूडियो से ये कार्यक्रम को पेश कर रही है। श्रोताओं को एक सूचना हम देने वाला है जो उतना तिस एक्टन द्रुफ बरेख्त अवसर नामी संगीत तो हम पेश करते हैं कितने सालों से आप श्रोताओं की सेवा में। तो हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का एक मशहूर गाने वाली, महान गाने वाली, हम लोगों को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ मशहूर गाने वाली मुफराव रोशा अक्कल, अब इस दुनिया में नहीं है। बीते दिनों में उनकी या उनकी मौत हो चुकी है। तो हमारे सभी संगीतकारों सुरीनाम देश हॉलैंड देश के तरफ से परिवार रोशा अक्कल के सभी परिवार, खास करके भाई प्रेम अक्कल एंड फैमिली, दीदी अंजना एंड फैमिली को सुहानी भूति प्रदान करते हैं। अब हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से इस परिवार को शोक संवेदना और सुहानी भूति प्रदान हम लोग मिलके देते हैं। हिल फील स्टर्क्ट नतुलक द हेल फैमिली अक्कल एंड ओ भाई प्रेम दीदी अंजना हिल फील स्टर्क्ट। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि नियार सेस्टक सीफन तक रोश अक्कल एक मशहूर गाने वाली थी, द फेमस म्यूजिक फरमासी हमारे सुरीनाम देश का, द इंडियन मेलोडी स्टार्स में वो कितने सालों तक गाती रहती थी अपने भाई प्रेम अक्कल जी के साथ, ऑन द लाइनिंग फंड कुमार बच्चाना तिलक, और हॉलैंड देश में वो तमाम ऑर्केस्ट्रास के साथ, जैसे मस्ताना ऑर्केस्ट्रा, पांडेरो, इंडियन डायमंड्स, इशारा, द स्ट्रेंजर्स ऑर्केस्ट्रा और सभी मशहूर मशहूर म्यूजिक फॉर्मेशंस के साथ वो कितने बार शोज में हम लोगों को नजर आई। तो हमारे सुरीनाम देश के तमाम संगीतकारों की तरफ से और हॉलैंड देश के सभी संगीतकारों के तरफ से पूरी परिवार अक्कल को सुहानी भूति प्रधान हम लोग देते हैं। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का ये सरनामी संगीत जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। खपत उकम्बेच मोइलक में खपत बरेख्त ओक नेत खोर्त एंड सोल सिवेत हैपिक ओक यार साम मेत रूश बहन जी हेल फिल कॉन्सर्ट है वो साम ओक सॉन्ग अटूनमेंट मस्ताना मेत चाहत ऑर्केस्ट्रा एंड ओक मेत भैया महेंद्र रघु ओक है वो een paar keer samen opgetreden, dus ik heb het een beetje moeilijk, dat is best te begrijpen. Toen breek ik baat me, Miltown Waps, wie ze lekker nee, superhit songs from the Bollywood film industry. Toen stay tuned on, aapie ka awaaz hai, janta ka awaaz hai, found Hindustani radio ka awaaz hai, after the break.
1: Live vanuit Den Haag.
2: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai, gaadi huur karna hai to aapko jana padega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597. 0657 579 39. Contact in Nederland 0657 418 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel per Casco Cool op 00597 875 739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Koen Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Shiwami live broadcast hai. Atchun hai da Plus Radio par en natuurlijk ook te beluisteren via internet ke lehre dwara fahunfm.nl par. Ye karyakram aap sun rahe hai. तमाम श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में जहां पर भी हो जिस हाल में हो घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तान गेट का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट हो मैं ढेर भी लश्तर प्लेजीर के साथ जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो आप एक ऑर्गामान हो इवेंट और खानी साथ और या तो आप एक ऑर्गा वुमन हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा ये बात आज श्रोताओं से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं फाइव सस्ते दाम सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में मैं तो सदियों से आपसे यही कहते आ रहा हूं यारो आप लोगों से कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पटा आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल टाइडेंस कंट्रोल यूरोप 070 213 65 98 या तो आप तार करें 070 365 22 47 पर جو بھی ریڈیو کا کام ہو دینکن فاہن ہندوستانی ریڈیو. اسی طرح ہم لوگوں کے بارے میں چرچا کرتے رہنا یارو, ریکلام بناتے رہنا. Hats off to all of you and ہمارے فول ٹیم کی طرف سے اس کے لیے تہ دل سے دھنیواد. اسی طرح ہم لوگوں کے بارے میں چرچا کرتے رہنا یارو, ریکلام بناتے رہنا, ہمارے فول ٹیم کی طرف سے آپ شروتاؤں کو تہ دل سے دھنیواد. بینتینوخین لیت فن فاؤن ہندوستانی ریڈیو تو بنتی نویدن کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی جلد سے جلد فاؤن ہندوستانی ریڈیو کا ممبر بنے اور کو بھی بنائے. آپ کو تو ڈھیر سارا فائدہ ہی فائدہ ہے. سبھی جانکاری اس کے بارے میں آپ تار کرے تینس کنٹور یوروپ نیو سیشن تک تو 13 65 98 پر یا تو آپ 073-562-2047 پر آپ تار کرے. تو آپ بھی جلد سے جلد فاہن ہندوستانی ریڈیو کا ممبر بنے اور کو بھی بنائے. بینت فن ہارت ویلکم. یہی سے پروگرام کا شروعات کرتا ہوں اور دیکھا جائے تو ہماری

0: यू पे आप चुन है यारो जोर तोर से, आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। इस तरह से कुछ नगमे चुना हूं आज के इस हसीन प्रोग्राम के लिए। तो दूसरा भाग तो हमेशा की तरह कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे। तो अगला बयान सुनाने को जा रहा है उभरता हुआ कलाकार राहुल बेचन जी के मधुर आवाज में। आप ये अति सुंदर बयान सुनेंगे जो बिल्कुल नया नया रिलीज किया गया है, म्यूजिक बाय डेविन बीट्स, तेरी बातों में, स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, इंडियन सरनामी पॉप म्यूजिक।
1: यो ये राहुल बेचन

टैलेंटेड कलाकार है हमारे सुरीनाम देश का, द ब्यूटीफुल टैलेंटेड फराना से चिराग अली जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो डेविन बीट्स। तो मैं प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का ये हसीन सरनामी संगीत का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। यहाँ से अब आप सुनेंगे कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स एट बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, कुछ नए नए आवाजें और कुछ पुराने आवाजें मिक्स करके लाया हूँ। आई होप यू गाइस एंजॉय एट होम, बिकॉज अति सुंदर वीकेंड है ना। हैप्पी हैप्पी पास वीकेंड फॉर ऑन सालना तिवलिक। नजर लग गई ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को। एंच आइट एंच 2023 नेट गोन इंडियन आइडल का सुपरस्टार सिंगर ऋषि सिंह जी के मधुर आवाज में। Music composed by Sandeep Goswami and the song is written by Priyanka Bala and Kanchan Srivas.

Kiskine zerle gay beautiful song dil ko chulia mera ye ati sundar bayan. Music composed by Sandeep Goswami aur suna diya aap sabhi ko mashhoor gayak is zamane ka hamare Bollywood film industry ka the great Rishi Singh. एक अति सुंदर बयान आप सुनेंगे और वो पेश करने वाली है इस जमाने का महान गायक और क्या क्या नहीं जीत चुकी है और आजकल तो जज के कुर्सी पे भी बैठ चुकी है महान गाने वाली नेहा कक्कर का ये सुपरहिट न्यू सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज एंड आल्सो रिटन बाय पतिदेव रोहन प्रीत सिंह. Buhevich, enjoy.

सुंदर बयान श्रोताओं ने सुना और पेश की गई, खास करके फाहुनी हिंदुस्तानी जो के माध्यम से गाने वाली थी ग्रेट सिंगर इस जमाने के ग्रेट नेहा कक्कर का ब्यूटीफुल न्यू सॉन्ग कंपोज एंड रिटन अरेंज बाय पूज्य पतिदेव रोहन प्रीत सिंह। इसी तरह से कुछ नए नए सॉन्ग्स लेकर आया हूँ, लेकिन वो सुनेंगे आप ब्रेक के बाद। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना यार। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप भी जाइए, मौसम तो हसीन है। कुछ चाय या कॉफी जो आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको जरूर बैफिल कीजिए, और साथ ही साथ विज्ञापन और देश विदेश का समाचार भी सुनते रहना। कुछ मिनटों के बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा प्रोग्राम आगे को बढ़ाने के लिए। यारो तो जहां पर भी हो, जी साल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी जो का ढेर सारा प्यार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। आफ्टर द ब्रेक। यारो क्या बात है, इसी तरह से कुछ सुनाते

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो। पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन सरनामी संगीत का प्रोग्राम में शुरुआत करने वाला हूँ हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का एक महान गायक जिस पे हमें नाज है, गर्व है, और बैठक गाना का एक महा गुरु उस्तादों का उस्ताद श्री जगदीश उदित राम जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, मेरे ख्याल से द मैन विद मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी, ये जगदीश प्रसाद उदित राम। मेरे तो सौभाग्य है कि महान उस्ताद के साथ में तीन बार मौका मिला इनके साथ कुछ अपना भी सुनाया और कुछ बजाया। उस टाइम में मैं तांबुरेन ज़्यादा से ज़्यादा बजा रहा था और था इनके पूज्य पिताजी के बैंड जो रॉबी उदित राम के साथ वो उस जमाने में बनाए थे, और फकांसी से आया था जगदीश भाई। तो तो मिल के सुनते हैं ये महान फनकार के मधुर आवाज में भजन करे नित नेम से।

वाह वाह क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश उस्ताद का उस्ताद मास्टरो जगदीश उदित राम के ब्यूटीफुल आवाज में। कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो, जोधपुर से सरनामी संगीत चल रहा है। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडिस का, खबोरेनत रेस डिस्ट्रिक्ट निकेरी उस्ताद टी सनातन जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं कि देश के लाज हमेशा बचाना चाहिए।

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। And natuurlijk werk ze boys and girls, so zullen we lobby on blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Faun Hindustani Radio is te beluisteren via internet. Ke lehro duara faunfm.nl per aablog dunia ke. Chote chote kone me behi, 24 ghante rozana lagatar. Faun Hindustani Radio ka kaadigram ko sun sakte ho. So, jo bhi radio ka kaam हो इश्तिहारे खास फरमाइजे जरूरी खबरें देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत से दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत से दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉन एंड डेज भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो दे। सभी जानकारी आप तार करे टाइडेंस कंटोर उर फरमान अफ्टर फ्राइडे ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 070-365-2247। और स्टूडियो कतार का नंबर है 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना देन कन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो यूमेन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना साथियों और रेकलाम बनाते रहना क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप हम लोगों का मेंबर बने और रोको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। और zoals jullie al gehoord hebben en weten, hebben we ook een mooie karaoke team van Faun Hindustani Radio, waar we links en rechts landelijk en ook in Den Haag aan het optreden zijn. We hebben een paar optredens al achter de rug en ook eentje live op de radio. En het is leuk om te horen dat elke maand, laatste donderdag van de maand, live karaoke vanaf 6 uur 's middags kunt u ons volgen hè? तो जरूर आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। सभी जानकारी 070-365-2247 पर आप तार करें, dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider Don and Dodi Maestro Johnny Number One। आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए। तो साथियों घड़ी की तरफ देखता हूं तो 9 मिनट गुजर चुका है 8:09 सितंबर 2026 वोंसडागआवंद का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूं कुछ पुराने पुराने नगमे से आप सभी को खिदमत करने वाला हूँ। यही आशा उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को पसंद आएगा। तो एक दम बढ़ते हैं कुछ पुराने नगमे, बहुत ही पुराना नगमा है 1945 आई फिल्म गांव की गोरी। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि हमारे सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी का ये डोर ब्राक था पहला नगमा, वो जो हमारे फॉलोअर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने की शुरुआत किया वो था इन 1945 में द फिल्म गांव की गोरी। महान संगीतकार श्याम सुंदर ने रफ़ी साहब को मैं फिल्में सुना था तो उसको ये मौका दिया इस फिल्म में अपना आवाज़ उस जमाने के महान गायक एमजी दुरानी के साथ सुनाने को। तो मिलके सुनते हैं वाली साहब का लिखा हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम मैस्ट्रो रवि साहब। old Bollywood classical songs aap suniye.
1: Dil ho kaboo mein, arre dil ho kaboo.

0: अब तलक मेरा बटेरा
1: तैयार हो जा सुरखे।
0: जब तलक मेरा बटेरा सलाम तब तक हो।
1: अबे तोप की तीर की
2: बचना भाई,
1: जरूर बचना।

क्या बात है, अति सुंदर पुराना नगमा आप सुन रहे थे। एडू फिल्म गांव की गोरी 1945 ओल्ड बॉलीवुड क्लासिकल सॉन्ग en natuurlijk gezongen door onze maestro Ustaroka Bacha. Eerste nummer van hem uit de film Gaunki Gori. Padma Shri Mohammed Rafi Sahab Ji aur Saatun Kadir Hatha us zamane ke bahut hi jabardast gayak GM Durrani Ji महान संगीतकार उस जमाने का डगड़े श्याम सुंदर जी के साज था और अल्फाजे था लेखक वली साहब जी का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है साथियों, बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग में संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। तो एक और पुराना नगमा की तरफ लेकर चलते हैं, महान लेखक शाकिर बदायूनी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय मैस्ट्रो रवि शर्मा, मेर बकेंत अस म्यूजिक डायरेक्टर रवि, और आवाज है वही महान आवाज सुरों का बादशाह द ग्रेट रवि साहब जी। जरा सुन हसीना ए नाजनी कौन अपना कौन पराया, द मूवी 1963।

0: Zarazun Hasina e Nazani, beautiful song from the movie Kaun Apna Kaun Paraya 1963. Surakabacha, the king of melody, Rafi Saab ji ke beautiful awaaz mein, Shakil Badayuni ke alfaze aur mahaan sangeetkar Ravi ke saaj. 21 minute guzar chuka hai 8:00 साथियों, बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड. अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है 1971, कंपोज बाय जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने का द ग्रेट हंसराज बैल, महान लेखक वर्मा मलिक जी के अल्फाजे, और लाते हैं द क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी और सुरो का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी टूगेदर विद अ पंजाबी सॉन्ग प्यार दे भूले के फ्रॉम द फिल्म गुड्डी 1971 पंजाबी मूवी.
1: प्यार

एवरग्रीन आवाजें हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द किंग ऑफ मेलोडी एंड द क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी और रफी साहब जी दोनों ने मिलके इस सुनाए आप सभी को एक जबरदस्त ओल्ड पंजाबी सॉन्ग कंपोज बाय हंसराज बेल और लिखा है ये पंजाबी सॉन्ग को श्री वर्मा मलिक जी ने। अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए, एक जबरदस्त सॉन्ग सुनाने वाली है आप सभी को सुरों का देवी भारत रत्न द क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन अल्फाज़े है शैलेंद्र जी का फॉर ऑल लेट ऑफ द टेक्स्ट हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं क्योंकि जबरदस्त सॉन्ग है द ग्रेट लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी बेटी बेटे नेगेटिव फिर इंसिस्ट आज कल में ढल गया।

पर जे टोन हर्मन्स ने कहा है साथियों कि स्टेफन डू यू नीड एनिंग्स मार अफेन टू अ बीच एंड अले बीच इज दी स्टीरफ दिस फ्रेंड मार दी वर्गेट यू हेट इज यू डिकवस सेल्फ ओंटगान यू सेफ्ट इक बेन व्हाट मू मार ऑफ एन केयर दैन बेन यू आई लास्ट बीच टू एंड अ बेयर डूड vanavond gehad een president uit de jaren 1800 van Amerika die de slavernij heeft afgeschaft. De great Abraham Lincoln gene gehad zat joki, maak je geen zorgen, eet 3 stevige maaltijden per dag, zeg je gebeden, wees beleefd tegen je geldschieters, zorg voor een goede spijsvertering, doe aan lichaamsbeweging, leef rustig en gemakkelijk. Misschien zijn er andere dingen die jouw speciale geval nodig heeft om gelukkig te zijn, maar ik denk, beste vriend, dat je hiermee een heel eind op weg bent. Een hele goede om te onthouden hoor, van Sri Abraham Lincoln. तो साथियों अभी आप कुछ ज्ञान के बातें सुने जो मैं खास करके आप श्रोताओं तक पहुंचाया, ये यश उम्मीद लेकर के इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और बहुत ही जबरदस्त पुराना सॉन्ग चुनकर रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए। एक जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एडियार फिर तक जो काफ़ी मशहूर था उस ज़माने में, महान अभिनेता, एक जबरदस्त एक्टर भी था और ढेर गाने वो खुद लिखे, कंपोज किए और गाए। यह एक जबरदस्त सॉन्ग एट द फिल्म शाहजहां एट 1947 gecomponeerd door maestro, jabberjes music director. Ik denk dat hij zeker 4 decennia lang zijn muziek voor de Bollywood filmindustrie heeft gegeven. De man en de olie, maestro Naushad Aliji. Aur ganewala hai, Sri Kundan Lal Saigal ji, meer bekend als K.L. Saigal. कि जब दिल ही टूट गया, आगे सुनिए ये महान गायक के क्या गला था, क्या स्टाइल था और क्या अंदाज था, मिलके सुनते हैं।

0: क्या बात है, दिल को हिलाकर धर दिया, क्योंकि जब दिल ही टूट गया तो क्या क्या होता है यारो। ये तो आप सुन चुके महान गायक उस जमाने का, झगड़े के एल साइगल जी के ब्यूटीफुल आवाज में, फ्रॉम द मूवी शाहजहां 1946, कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो नौशाद। बयान की तरफ बढ़ते हैं, एक और जबरदस्त सॉन्ग है एड फिल्म परिवार फैमिली 1991। महान गायक नितिन मुकेश जी के आवाज में आप सुनिए जबरदस्त कल्याण जी आनंद जी के साज पर। और क्या अल्फाजे लिखा है अनजान जी ने, और गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अल्फाजे पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि हर एक लफ्ज इतने सच्चाई है इस गाने में कि समय बड़ा बलवान होता है यारो। ऑन थाउट है द टाइट इज सो स्टेरिकल्स अलस।
1: समय का उड़ता पंछी जिसको

चा क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कॉम्पोज बाय द ग्रेट संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिरोज खान शर्मिला टैगोर और फिरोज खान के ये बिल्कुल जबरदस्त मूवी प्यासी शाम में से निकाला हूँ ये अति सुंदर बयान। एंजॉय।

0: श्रोताओं सुन रहे थे क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म शाम प्यासी है, यानी प्यासी शाम। ये कैसा गम सजना, लक्ष्मीकंत प्यारे लाल के साँच और मजरू सुल्तानपुरी के अल्फाजे। क्या मधुर आवाज और क्या अंदाज में भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने आप श्रोताओं के लिए इतनी सुंदर बयान को गाई है, दिल को छू लिया। तो घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों, तो 4 मिनट बाकी है 9 बजने में। तो अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ साथियों, कहीं जाना मत।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Autoverhuurbedrijf in Suriname. Amalia Autoverhuurbedrijf. Magentaweg 200.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस ब्लॉग या इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यार, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान डॉक्टर फ्रेडक tijdens kantooruren kunt u op de volgende telefoonnummers bellen: kantoor 070-365-2047 of Studio Qatar kan nummer 070-362-2077. Quality Grantier Service gezet van Hindustani Radio kam op lokale bij Chinese kanikli in te zaren met rete jaro. En niet te vergeten, hè, onze kwaliteit is altijd uw garantie. En natuurlijk voelt u zich altijd lekker erbij. Faun Hindustani Radio, toch? इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और रोको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। We hebben ook onze eigen karaoke team waar heel veel omroepers meezingen. Volg ons social media en ook die van de omroepers, dan zult u zeer zeker zien en horen wanneer wij in de buurt voor u gaan optreden. En leuk om te weten dat elke maand het laatste donderdag van de maand wij dan live karaoke vanaf 6 uur s'avonds voor jullie zingen. We hebben het een keertje gedaan, een paar weken geleden, en het is heel goed bevallen hoor. Dus wachten tot het laatste donderdag van de maand, hè? Dan gaan we weer leuke dingen laten horen, hopen we. Dus luisteren! Charmlit guzar chuka hai nau bach kar, to ek hidam lekar chalte hai program ke taraf saathiyo, bite hue hafte hum log pahunch chuke the film Pratigya tak, ab aap nagme sunenge takriban 10:30 baje raat tak, sirf nagme jin movies mein mahan abhineta the great actor the he-man the hitman सभी का जाना माना और प्यारा कलाकार धर्मेंद्र जी ने काम किया है। तो फिल्म प्रतिज्ञा में से आप गाना सुनिए साथियों, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड गेस्क्रीफ डोर आनंद बख्शी। ब्यूटीफुल सॉन्ग बिल के सुनते हैं परदेसी आया देश में।

is een Rabian uit de film Pratigya 1975. Lata Jike Beautiful Avance mee, gecomponeerd door Lakshmikant Pyarelal en Alfa Zitha Anand Bakshivjika. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, एक जबरदस्त सॉन्ग है एड फिल्म प्रतिज्ञा 1975 गकंपोनीड डोर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी के अल्फाज और एक बार फिर लता जी के आवाज में मोरनी रे मोरनी मैं तो जंगल की मोरनी क्या बात है

Morni, Remorni, Maito Jangalki and Morni. Kiawa, a beautiful song uit de film Pratigya, let us keep beautiful avance me. Gecomponeerd door Lakshmikant Pyare Lal, geschreven door Anand Bakshi. Found Hindustani Radio PA Tune Hai Satyo Budhwar Karatri Ka Program. गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है. 15 मिनट गुजर रहने वाला है 9:00. अगला बयान, उठ नींद से मेरे जिया जरा जाग जाए. जबरदस्त सॉन्ग एक बार फिर लता जी और रफी साहब जी के आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ.

Sunder bayane ay du film pretigya aw sati sad akhri bayan tha us film ka Lata Mangeshkar ji aur Rafi sahab ji ki aawazon mein aap sun rahe the ut neend se Mirziya jaag jara 20 मिनट गुजर चुका है साथियों 9:00 सभी गाने फिल्म प्रतिज्ञा का मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1957 तक, कहते हैं मुझको राजा, जबरदस्त मूवी। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी के साथ काम किया है महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर विश्वजीत जी ने, मलकाए हुस्न एंड सेंट ट्वीट फ्रॉ हेमा मालिनी जी भी इस फिल्म में काम किया है, और ब्यूटी क्वीन रेखा जे अनोख फेल अंदरन। महान संगीतकार द ग्रेट राहुल द बर्मन जी के साथ है, और सभी गाने मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा है इस फिल्म को। तो फिल्म कहते हैं मुझको राजा से ये जबरदस्त मजेदार सॉन्ग आप सुनिए। हसीनों का पुजारी और संगीतकार का बादशाह और शहंशाह द ग्रेट किशोर दा के आवाज में की बम चिक चम चिक, अलीन किशोर दा का सुर के निमट सिंह।

बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिका बम बम चिका बम बम ए बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बाबा लोग सुनो काका लोग सुनो दादा लोग सुनो जल्दी जल्दी ए क्या ले बादशाह ना दे कुड़िये ए पुत्र देख भाई इधर आ।

ஐ சம்பு தங்க தம்பு தம்பு மே தம் தம் ढोल बजे ढम ढम तंबू में ढम ढम ढोल बजे ढम ढम छोटी सी कबूतरी नाच रही चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम घुंघरू पायल बांधे घूमटा उतारे चले मुगले आजम के आगे खड़े

0: बाबरे जमुरे जरा हटके जल में दिखा दे प्यारे बटके यही से दिखेगा अलबत्ता दिल्ली बम्बई कलकत्ता हरे राम कृष्णा प्यार की कहानी चाहे देखो तो चोर चाहे काला पानी कल्ला जोर कल 20 साल पहले एक से एक नहल पे दहले एक से एक नहल पे दहले
1: आई कुम बैकुम काला तुरी जोधुर मस्त छोशुर बारी रेल कॉम जोमा जोम पा पिजे आलो तम

0: ಪಡ್ಕೆ ಬೌಲ ಬೆಟ್ಟ ಬಂ ಬಂ ಪಡ್ಕೆ ಬೌಲ ಬೆಟ್ಟ ಕಿಡಕಿ ಖೋಲ ಬೆಟ್ಟ ಬಂ ಬಂ ಚಿಕ ಬಂ ಬಂ ಚಿಕ ಬಂ ಬಂ ರಸೂನ್ ಕಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಯ್ ಕಟ್ನಿ ಕಾ ಬಟರ ಮುನ್ಶಿ ಮುಂಡಕ್ಕ ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಕಾ ಹುಜೂರ ಅಗ್ದಾ ಸರ ದಿಮಾಗೆ ಫುರ್ಕತ್ ಹುಜೂರ ಅಗ್ದಾ ದಿಮಾಗೆ ಫುರ್ಕತ್ ಕಮಾಲೆ ಹಲ್ಕ ಕಮಾಲೆ ಹಲ್ಕ ಚಲ ಹಟ ನಟ ಕಟ ಪನ ಘಟ ಚಟ ಪಟ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಹಾಲ್ ಹಾಲ್
1: ಸಬ್ಕೋ ಮೇರಾ ಝುಕ್ ಝುಕ್ ಕೆ ಸಲಾಮ್ और राम राम।
2: क्या बात है, बम चिक बम चिक। किशोर दा जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुन रहे थे अति सुंदर बयान। एक फिल्म कहते हैं मुझको राजा, आरडी बर्मन के सांच पर। चार मिनट बाकी है 9:30 बजने में और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओतिस गोत नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है। और हम पहुंच चुके हैं फिल्म रातों के राजा तक, जो रिलीज किया गया था 1985 तक में। अगला बयान लियोना बाबू तानिक पियोना कह रही है आशा भोसले जी। एक फिल्म कहते हैं मुझको राजा।

Het is beautiful song uit de film Kaite Hai Mujhko Raja, 1975. Asha Bhosleji, Rahul Dev Burman ki saanch par Majru Sultanpuri ke alfaze. Found Hindustani Radio pe aap chun hai saathiyo, ghadi ke taraf dekhta hu to pure 9:30 का वक्त हो चुका है, तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। कुछ दो लाइनें शेर शायरी है, यही तो खूबी है ना, दो लाइन शेर शायरी का कि कितने कितने कम लफ्जों में लोग आधा से लेकर पूरी कहानियां बता देते हैं। क्या है यार कि मोहब्बत जब सच्ची हो, मोहब्बत जब सच्ची हो तो सवाल खुद मिट जाते हैं। तेरा प्यार मेरी रूह का उजाला है, तेरा प्यार ही मेरी रूह का उजाला है, तेरे साथ सब कुछ मुकम्मल लगता है, मकलकर लगता है, बिन ब्रेक लगता है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे बेहतर और कोई, नहीं चाहिए मुझे तुमसे बेहतर और कोई, मुझे सिर्फ तेरे साथ सुकून मिलता है।

रहे हम तेरे तसुब्बुर के साथ, रात भर जागते रहे हम तेरे तसब्बुर के साथ, ऐसी दिल लगी कि दिल ने हमारे साथ कुछ कही, अनकही बातें याद आई, मुझे तेरे चेहरे की वो हंसी याद आई, मैं चलता रहा तेरे ख्यालों के साथ, ख्याल ही कहां रहा फिर दिन हो या रात।

बहुत गुरूर है ना, उस चांद को बहुत गुरूर है कि उसके पास नूर है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं यारो, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे पास

दिल की हर धड़कन में तेरा ही नाम है और होना भी चाहिए। दिल की हर धड़कन में तेरा ही नाम है, तू ही मेरी सुबह और तू ही मेरी शाम है। क्या बात। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। अगला बयान फ्रॉम द मूवी कहते हैं मुझको राजा और जो बजाता है जोर जोर से भी बाजा। मैंने कब चाहा कि दुल्हा बनूंगा, अमर बिनवनो अवर मांगे इच्छा है नीत। एक फिल्म कहते हैं मुझको राजा, रफी साहब और आयशा भोसले इस बार।

अच्छा भोसले और रफी साहब जी के आवाज़ों में तीसन दरमियान आप श्रोताओं सुन रहे थे एड फिल्म क्या बात है कहते हैं मुझको राजा जो बजा देता है सभी का बाजा यू नो पाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों 20 मिनट रह गया है 10 बजने में अगला बयान अयोरे गया काम से दीवाना कह रहा है किशोरदा आशा भोसले जी के साथ मिलकर आरडी बर्मन के साथ पर मजरू सुल्तानपुरी के अल्फाज रिलीज हुआ ये फिल्म 1955 में

गया काम से दीवाना, कह रहा किशोर दा और आशा भोसले मिलके एक फिल्म कहते हैं मुझको राजा, कंपोज एंड अरेंज बाय मास्टर आर डी बर्मन और लिखा है मजरू सुल्तानपुरी जी ने ये ब्यूटीफुल मजेदार सॉन्ग को। जिया में तूफान एक बार फिर लाते हैं क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री द वन एंड ओनली आशा भोसले जी कहते हैं मुझको राजा एडी बर्मन के साथ पर।

0: जिधर दे
1: मोरी बैया, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुन रहे थे क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल अक्षय भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में। एड फिल्म कहते हैं मुझको राजा, नेगेटिव फैंस इवन तक कंपोज बाय जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट राहुल देव बर्मन जी, और लिखा है मजरू सुल्तानपुरी। बाकी है साथियों 10 भजने में, अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से बतला दूं कि फिल्म कहते हैं मुझको राजा का सभी नगमा आप सुन चुके। जिया में तूफा तो आखिरी बयान था उस फिल्म का। तो अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक और जबरदस्त लव स्टोरी मूवी, निकला था 1975 में ऑल्सो, और बहुत ही हलचल मचाया था ये फिल्म उस जमाने में सुरीनाम देश में, क्योंकि सभी गाने सुपरहिट साबित हुए थे। महान म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट रवि शर्मा, मेयर बकैंत अस रवि जी, साहिर लुधियानवी के अल्फाजे, और गाने वाले तो रफी साहब लता जी है। तो ये टाइटल सॉन्ग सुनिए उस फिल्म का, एक महल हो सपनों का। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है, क्या बात है, द ग्रेट मलकाए हुस्न, मलकाए क्या बात है, क्या क्या के मलकाए नहीं थी, मलकाए कला, मलकाए हुस्न। और जो हस्ती थी तो गाले में जो गड्डी हो जाती है ना ब्यूटी क्वीन लोगों के, वो इसके पास भी निकलती थी, द ग्रेट शर्मिला टैगोर। और आगे में अशोक कुमार भी काम किया है ब्यूटी क्वीन, एक डेंट द फीर द फ्रॉ वन किशोरदा। या लीना चंदावरकर जी ने भी इस फिल्म में काम किया है, साहिर लुधियानवी जी के अल्फाजे है। और म्यूजिक डायरेक्टर तो आप सुन चुके रवि जी के। तो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग आप सुनिए, सुर का बादशाह रफी साहब जी और क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के आवाज में, एक महल हो सपनों का। काफी करीब है ये नगमा आपके दिलों का, झकझोर के और हिला के धड़ देगा। बहुत सुनने को मिलते थे ये नगमा फरहाल वीकेंड में ना, खास फरमाइश बहुत चलाते थे लोग शादियों के सीजन में।
2: एक महल हो

फन हंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 5 मिनट गुजरने वाला है 10:07 साथियों, तो हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनाथियोलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोसोलोबिलोबियन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनाथियोलिक बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रेन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, डेंकन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। फाइट सस्ते दाम सर्विस ग्रांट योर क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना, हम लोग उपमात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे साथियों उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे। ये भी किफायत सस्ते दाम में सभी जानकारी 9 7 3 5 6 2 2 7 4 तक पर आप तार करें फन मांडक टॉट फ्रेडक टेंस कंटोर यूरन। यदि नो खेलत फन फाउन इंडस्ट्री रेडियो तो गुजारिश बिंत निवेदन किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द फाउन इंडस्ट्री रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एन अतिलक हैव अवे ओक ऑनस एक कर ओक टीम वार वे ऑल लिंक्स एंड रेक्स इन देन हाग ओक andere steden al hebben opgetreden. En de bedoeling is dat wij elke laatste donderdag van de maand vanaf 6:00 s'avonds live karaoke op Faun Hindustani Radio gaan presenteren. Dus blijf ons volgen en ook onze omroepers en social media. Dan hoort u of ziet u ook wanneer wij live voor u ergens in een zaaltje gaan zingen. Bijvoorbeeld, is ook mogelijk, hè? Toen heb je zult hem loka member bene, oh, roko bi bene. U hoort het wel op het achtergrond, hè? We zitten dicht bij een brandweerkazerne, door je toch, wat daar heet hij af en toe. Kom, aangelegd, anders dan zijn ze even aan het uitdrukken. Altijd spannend, maar nooit, bedoel, leuk is het niet hoor. Maar ja, je hoort het toch, hè, dwars door alles, die sirenes. Oh, oh, Den Haag. De stad van onze dromen, hè. Program Koekidam Borate. Oh ja, voordat we verder gaan, is het raamloeken waarmee Tjartjakker Terena reclame bena Terena. Kjoki aaplog hij to hamlog bij hij na. और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अगला फिल्म फिल्म एक महल हो सपनों का 1975 शर्मिला टैगोर लीना चंद्रवर्कर अशोक कुमार देवन वर्मा और रमेश देव इस फिल्म में भी काम किए हैं। तो इसी फिल्म में से आप नगमा को सुनिए लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में। शायर का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय रवि। दिल में किसी के प्यार का

0: मुझे
1: क्या बात, दिल को छू लेने वाला नगमा आप सुन रहे थे। एड फिल्म दिल ने, क्या बात है, एक से एक महल हो सपनों का, और एक से एक महलों के सपने भी लोग देखते रहते हैं ना। अति सुंदर बयान लता जी के आवाज में रवि के सांच पर आप अभी सुना। तो अगला बयान के तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आखिरी दो लाइन शेर शायरी हो जाए ना। कुछ जबरदस्त भेजे हैं भाई भूपेंद्र जी ने, ये तो भी चैंपियन है दो लाइन शेर शायरी लिखने का। तो सुनिए क्या भेजा है, भेजते ही रहते हैं और मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों को, कोशिश करता हूँ कुछ अपने ही अंदाज में ना। अर्ज क्या है यारो, दिल की हर धड़कन में तेरा ही नाम है, दिल की हर धड़कन में तेरा ही नाम है। तू ही मेरी सुबह और तू ही मेरी शाम है। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं है, एहसास भी है, और तू ही मेरी उस मोहब्बत की पहचान है। तेरे इश्क में इस कदर खो गए हैं हम, तेरे इश्क में इस कदर खो गए हैं हम, अब खुद से भी ज्यादा तुझे चाहने लगे हैं हम। तेरे प्यार की बारिश में भीग जाने को चाहता हूँ, तेरे प्यार की बारिश में भीग जाने को चाहता हूँ। हर जन्म बस तुझे ही और सिर्फ तुझे ही पाना चाहता हूँ। आखिरी शेर साथियों आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, तेरी मुस्कान से शुरू होती है मेरी हर खुशी, तेरी मुस्कान से शुरू होती है मेरी हर खुशी। तू साथ हो तो हर मुश्किल भी लगती है आसान सी। ये था कुछ आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है किशोर दा के मधुर आवाज में, संगीतकार और महान कलाकारों का बादशाह और शहंशाह हसीनों का पुजारी किशोर दा को लाते एक बार फिर से प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं एक फिल्म एक महल हो सपनों का। The legendary singer, evergreen, और हमेशा क्या बात है, जितने गाने किशोर दा गाए हैं ना, सभी गाने में इतने दम है यारों की क्या मैं बोलू। वारफान दित उक इंफांसेस, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, एक एक अल्फाजे में इतना सच्चाई है यारो। सुनिए और समझिए ये सॉन्ग को।

0: देखा है जिंदगी, मैंने इतनी करीब से क्या बात है, क्या गाना था, क्या अल्फाजे है और क्या गला आवाज किशोरदा का। अगर फिल्म एक महल हो सपनों का, निगरी फैन सही फिर कंपोज अंत अरेंज बाय रवि शंकर शर्मा, मेरब कैंटॉस म्यूजिक डायरेक्टर रवि और अल्फाजे था साहिर लुधियानवी जी का, धर्मेंद्र और शर्मिला टागोर, लीना चंद्रवर्कर के ये सुपरहिट मूवी एक महल हो सपनों का। साथियों धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान है रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में रवि जी के सांच पर, और क्या अल्फाजे है साहिर जी का, जिंदगी गुजारने की को साथी चाहिए ना, मिलके सुनते हैं।
1: जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए,

0: जो न मचले वो तबीयत क्या।
1: तबीयत तबीयत सब रखी रह जाती है जब पैसा नहीं होता।
2: पैसा पैसा पैसा, अरे

0: सबसे विनती है कि कौम के लिए चंदा दीजिए, जेबे झाड़ कर छप्पर फाड़ कर, कहीं गड़ा हो तो उसे उखाड़ कर, अब मैं तो थक गया गला फाड़ कर।
1: तो जी हाँ साथियों, मजेदार सॉन्ग नेक्स्ट वीक मैं पूरा का पूरा ये गाना को सुनाऊंगा। धीरे धीरे वक्त आ गया है करीब आप सभी से विदा लेने को।

प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आज उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों की जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आज उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूं सरनामी संगीत लेकर, और उसके बाद कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। मैं कुकीज ऑफ फ्यूली एक साल गड्राइट कुकीज जिलेबी सो ते कलमाल हाथ में ही खनो मैं कलमाल गड्राइट। जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन। जाते जाते हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूँ, और आज ये अति सुंदर डुएट

0: जाने को है घर।
1: और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो फरमाश्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम, एक गम मुस्कुराने के

पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हम हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत के ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितने गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी

और दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यागनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक गिल्लाता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है, आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरे दिल में आती ही रहेंगे। और नैतिक लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारो, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक सेफ न फेटा। फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

0: पुरानी रेडियो।
1: ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे और लातवाई खनिट में द और निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा। मूवी का नाम है नागिन।

पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है, हमारे यारों हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सबको जानते हैं कि इश्त में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इश्त में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है। मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते ही तदलत महमूद का और नाइटिगेल वताजी का जोंग थे। आशा परीख सुनील लतीश ने हमें काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का। ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है आपकी आंखों में क्या है। ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं।

दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ हम चल रहे कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लता जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिंह ने तमन्ना ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

कौन मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, नैतिक लता जी का ये सॉन्ग थे। उसके बाद प्रेम चलते है मौफी के नाम असली नकली निकति होने द्रियन सस्तका, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमान श्री मोहम्मद रफी और नैतिक लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसर जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

से बांध लिया है मूवी के नाम थे असली नकली के बांध पे हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं। और ओल्ड एंड गोल्ड के बांध में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में, बस प्यार ही प्यार, पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मूवी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मूवी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और सोनु निगम अलकायंगनी का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग के बाद हम चलते हैं उदित नारायण। उदित नारायण जिस बहुत खूबी से इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए ये क्या है।

Du je लफर्सकिली है, लफर्सकिली है। तो एक गीत है यहां पर हम हमने प्लेयर पे रख चुका है अखियों के झरोके से, और ये एक मस्त भरी टॉप सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

और अनोखो अन अन अखियों की झरोखी के बाद हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार आप तक पहुंचे। और चाहे ठंड लगते हो और चाहे गर्मी का मौसम है, रेडियो फाहुन आपके साथ है। और धरती पे जहां भी रहेंगे, हमारा तुम्हारा प्यार अमर रहेगा।

हमसे और तुमसे प्यार इतना हुआ है कि साथ में राज बब्बर क्या कहते हैं वो भी सुना जाए।